प्रिय अहन सुसहज सुभाए दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटिया।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी
2: उचारी है फिर बाबे ने

के हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियों विचों प्रबल कमजोरी अहंकार आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान हौमें एहा जात है हौमें कर्म कमाए हौमें एही बंदना फिर जौने पाए। हौमें दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण। इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे हैं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वक वक जीवन विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी वेखदे हाँ हाथी विच कामरोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। हौमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्टि रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने ये रोग दुख का कारण बनते ने और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थों का अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन का अहंकार किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उनका अहंकार। मूल रूप ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होता है जोवन जवानी स्वप्न के आधार पर खड़ा होता है और शक्ति सता
ताकत इसके आधार पे खड़ा होता है। जो बन धन प्रब ताकै मग में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जो बनवंत होवे या जो बन दी चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालत पागल हो जाता है। सता पागल कर देती है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जो बन पागल पन की सीमा तक ले जाता है, पर जो बन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचा देच है, विचारा देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तदि पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप को महान समझदा है, दूसरे को तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल दे खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुदरा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू का महान शायर इसको एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान की मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वध अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं, और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम,
ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है। ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कव कुनीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी। कह रविदास सभे नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। इति सारे भूल के पागल होए फिर देने, कौन हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होता है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होता है, क्योंकि अवगुणा के आसरे से अहंकार को अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसनों इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, इक ना नाद ना वेद। इकद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत ना सिद्ध, अक्कल सिर अक्षर का भयो ना लहन। अक्षर दा कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत दा कोई बोध नहीं, किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल घर, जो बिन गुण गर्व करन, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन।
चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मुंडे, दुर्गंध ही के बेड़े। तू है कि हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी, और किया तू हड्डियां का मान, जोबन जवानी का मान, हड्डियां का मान, मांस का मान, मिंज का मान, और खलड़ी का मान। इस तो अलावा और है कि एक आया कि इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती, और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर देने, कर्पूर बहुत सुगंधा पर्स मानक देहं मलिनं, मजा रुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञान लड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां, फुल्ला जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदे आ, स्पर्श करदे आ, मैलियां हो जांदियां ने। मजा रुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञान लड़ो। है कि दुर्गंध खून मिंड मांस कलड़ी, अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है, जो बंदा अहंकार करता है, फिर धन का अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब किस तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन कितने उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होता है, और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आखरे ते तू धन कट्ठा कर लिया, तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नु बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लिए बनाई है, बनाई जाता है, बनाई जाता है, बनाई जाता है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के कोई प्रसन्न बड़ा होता है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो माण मिलता है, वो माण इसके अहंकार नो होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया, हुण त्याग दा अहंकार। सता कोल है, सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार, अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है। और अहंकार तो बचना औखा, जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाण लई बनाने आ, अहंकार बैठ जाता है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया।
सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए। पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उहदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार दावा कीता सी हरनाग कृष्ण ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हाँ खुदा, कौन होंदा खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी का सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाने की कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहों का मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक की निगाह मेरे से टिक है, और हर एक का मान मैं हो जावा, मेरे से मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ, एक जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, एक जन्म मरण मिटा के प्रभु का रूप बना देती है, बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते हैं तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। तू है तू है तू है, इस बिरती ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान का रूप बना दिता। मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच, जिदिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ते तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है
ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪਰ ਵਿਨਮਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਜ ਰਾਹ ਚਨਾਰ ਅਜ ਰਾਹ ਚੋਨਾਰ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਤ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਇਤਨਾ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਬਾ ਖਲਕ ਚੁਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਨਾ ਕੁਨਤ, ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗਰ ਰਵੀ ਕੇ ਚੋਨਾ ਜਾਓ ਕੇ ਤੋਰਾ, ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਖਵਾਨੰਦ ਉਹ ਇਮਾਮਦ ਨਾ ਕੁਨਦ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਂਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਤਕ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਤਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਿਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੂਰ ਕਾ ਸਿਰ ਨੀਚਾ। ਆਖਿਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਿਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

अतते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा, अहंकारी हां नहीं कर सकता। सारा माहौल ही

कुल समर्था है, ताकत है, उस हिसाब नाली वो ना करता है। ना करके दसना चाहता है, मैं तेनु रोक सकता, मैं तेरे काम नु रोक सकता। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना हां कहना ही भुल गया। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होता है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, ता भी मालक कहता है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है। ना अहंकारी ना करता है, सबनों ना करता है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करता है, और जितना ना ना करी जाता है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृणंत अनिक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होता है, इसे दुश्मनी बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारा रद, निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितों खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नु मित्र बना लेंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नु उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नु, जड़ चेतन सब नु अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नूं मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दसदी है, इक सज्जन सब सज्जना, इक वैरी सब बात। जद उस इक नूं सज्जन बना लैंदा है ते इक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस इक दे आसरे ते खड़ी है, अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है। जीवन धन हो जाता है। कहने मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ, जो कहने गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नू भी मित्र बना लिया है, दुष्टां नू भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सबको उम्मीद हम आपन की ना, पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं, अगर उदारमक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना, साधना विच लीन है, कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नु मारन वास्ते है। और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है, और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जाता है। सरा साधना विच लीन ये योगी

0: गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर देता, सिर वट देता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकत मैं।

आंदरा रह गईयां, सुट दित्तियां गईयां, बाकी ते सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मास कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईयां, कम विच वर्तियां, केवल आंदरा बच गईयां। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी जिहड़ी तंग लाई जांदी है वो बकरे दी आंत आउंदी है, अंदर आउंदी है। ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए, ये आंदरा ही रह गईयां सन।

सदा फुसे धुन की बनाने के लिए, जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते हो, नदाफ जोरदार सोटा मारदा है, बस उस नाली रुई पिंजी जाती है।

अहंकार तेरे करके ते जीव जम देने मर देने आम देने जान देने दुख भोग देने सुख भोग देने थक जान देने टूट जान देने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कहीं ब्रह्म।

केंद्र आशा इष्ट उपासना खान पान पहरान खट लखन प्रगटे जहां तह मित्रता जान छे गल्ला आपस विच मेल खानिया छन। इच्छा एक भरा दी इच्छा कुछ होर है, दूजे दी इच्छा कुछ होर है, इच्छावां टकरा जाणगी, इच्छा टकरा जाएगी, विरोधी इच्छावां एक नहीं होण देणगे। मेरी इच्छा कुछ होर है, दूसरे दी इच्छा कुछ होर है, विपरीत इच्छा है, तो जिनके विपरीत इच्छा है, मुखालफ इच्छा है, ये दूरी कर देगी। तुलसी कहिंदा है इच्छा एक होवे, आशा इष्ट, इष्ट भी एक होवे। सारी दुनिया विच किसे दा कोई इष्ट, कौम तो इको है, साडे हिंदू वीर इको ने, पर सारयां दा इष्ट एक नहीं है। किसे दा शिवजी, किसे दा ब्रह्मा, किसे दा विष्णु, किसे दा राम, किसे दा कृष्ण, किसे दा महाकाली, कोई देव समाजी है, कोई आर्य समाजी है, एको ही कौम है, इष्ट अलग अलग ने। दूर क्यों जाओ, तुलसी दे इष्ट श्री राम ने। ये जद मथुरा दे चाहे कथा करन लई, उना दिन च कथा करदे सन चल फिर के। मथुरा दे चाहे अद्धा शहर इकट्ठा होया, मूर्ति श्री कृष्ण दी सी, तुलसी ने मत्था नहीं टेकया, वो खुद लिखते ने। उन्हां दी खुद दी लिखत ना आउंदी ते मैनूं कहण दी जरूरत नहीं सी। आखिर तार्किक लोगों ने कहा, तुसी इतने वड्डे भगत, इतने वड्डे ज्ञानी, इतने वड्डे लेखक कवि, तुसी मत्था क्यों नहीं टेकया, तुसी सिर क्यों नहीं झुकाया। तो कवि सन कविता च दसदे ने, कैसी सुंदर छब बने भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने में जो धनुष बान होए हाथ। मैं धनुषधारी दा पुजारी हां, मुरली दर दा पुजारी नहीं। हां, मुरली दी थां ते धनुष बान दे दो तो मैं झुकदा, उंज नहीं झुकांगा। तुलसी कोई मामूली पद्धर दा मनुख नहीं है, रामायण दा करता है। कोई मामूली इंसान नहीं, भारत दे चोटी दे विद्वानां च गिणिया जांदा है। कोई आम पद्धर दा मनुख नहीं, चोटी दे भगतां दे शुमार होंदा है। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने वे जो धनुष बान होए आत। तो तुलसी कहिंदे ने मित्रता उत्थे आउंदी है, इष्ट एक होवे। ए नहीं मेरा इष्ट कुछ होर है, दूजे दा इष्ट कुछ होर है, मित्रता नहीं होवेगी। मेरी इच्छा कुछ होर है, दूजे दी इच्छा कुछ होर है, नेड़ता नहीं होवेगी, इच्छावां टकरा जाणगियां, इष्ट टकरा जाणगे। आसा इष्ट उपासना, तुलसी कहिंदा उपासना दा ढंग भी एक होवे। ए नहीं कोई पूजा पाठ करे ते कोई नमाज पढ़े, कोई जप करे ते कोई तप करे, कोई प्राणायाम करे कोई योग साधना साधे, कोई रेचक कुंभक करे कोई नेती धोती दी क्रिया साधे। कहिंदा नहीं, उपासना दा ढंग भी एक होवे। दूजा नमाज पिया पढ़दा, एक पूजा पिया करदा, तुलसी कहिंदे ने मित्रता नहीं होवेगी, उपासना एक नहीं है, इष्ट एक नहीं है, इच्छा एक नहीं है। आसा इष्ट उपासना खान पान पैरान, ते खाने विच भी सहमति होवे। खाना हर धर्म ने कुछ खाने नू वर्जित गिणे, ए ना खाओ। लंबा चौड़ा खुलासा ना करिए। कुछ साधु भारत विच ऐसे भी ने जो दूध भी नहीं पींदे, कहिंदे ने ए लिक्विड मास है, ए सॉलिड मास नहीं है, लिक्विड मास है, ए लाल मास नहीं है, चिट्टा मास है, नहीं पींदे, परहेज करदे ने, वो नहीं पींदे। और बेशतर उसनू अमृत मनदे ने दुध नू। गुरबाणी कहिंदी है पशु मिले चंगियाईयां खड़खावे अमृत दे, अमृत देंदियां नहीं गऊआं मज्जां। पर वो कहिंदे नहीं, ये लिक्विड मास है, तरल मास है,

ठोस मास होंदा एक तरल मास है, कहंदे तरल मास है, आखिर मास दा निचोड़ है और की है, नहीं पींदे, बड़ा परहेज कर देना। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहंदा खाण दे भी सहमति होवे, ये नहीं एक आखे मेरा धर्म इजाजत दिंदा इस खाने नू, एक आखे मेरा नहीं। आसा इष्ट उपासना खान पान पैरान, मैं ईसाई मिशनरी देखे ने चर्च दे भी शराब पी लेंदे ने, उंज मैनू नहीं पता सी, रोचेस्टर इंग्लैंड दा एक शहर है, गुरुद्वारा ते चर्च आमने सामने ने, ते ईसाई जरा खुले सुभा दे आंदे ने, क्रिश्चन गुरुद्वारे आ जांदे सन, पादरी भी आ जांदा सी। एक दिन मैनू कह गए वे 10-15 मिनट आके बोलिया, ते मैं उन्होंने कहा मेरी इंग्लिश बहुत ढिली मठी है, कहने लगे नहीं मैं अंबाले रहा, किधरे अंबाले चर्च दे रहा होना, अंग्रेजा के राज दे समय बुजुर्ग है, कहिंदा मैनू हिंदी आउंदी होर बथेरिया नूं आउंदी, तुसी उर्दू च बोलना हिंदी च बोलना। मैं कहा चलो फिर ठीक है काम चल जाएगा। ये खुले सुभा दे आउंदे ने, इन्हां दा सिलसिला थोड़ा जिहा फराग दिली वाला है, बर्दाश्त जो है करदे ने, पर मैं देख के हैरान हो गया, चर्च दे अंदर बार सी बनी हुई, पी रहे सन, हद हो गई। इस्लाम हराम कहंदा है, गुरबाणी कहंदी है जिस जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहंदा खाने विच भी सहमति होवे पीण विच भी सहमति होवे, ये नहीं एक आखे नहीं ये दुध अमृत है, एक आखे नहीं मास है नहीं पीना, एक मास खाई दा एक मास पीना है, मास पीना भी है मास खाना भी है। खान पान पहरान ते पहनन दे च भी सहमति होवे, पहरावा एक होवे। ये छे गल्लां आपस दे च मेल खान ते मित्रता हो सकती है वरना नहीं। तुलसी दे इस सलोक दे मुताबक ते ए मित्रता रूहे जमीन ते हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया दा खाना इस एक किस तरह करिए, भारत दा खाना ही एक नहीं है, बंगाली कुछ और खांदे ने, असामी कुछ और खांदे ने, पंजाबियां दा होर खाना है, कश्मीरियां दा होर है, गुजरातियां दा होर है। पिछले दिन ही जब 300 साल खालसा साजना दिवस मनाया गया से, ते दास दी सेवा श्रोमणी कमेटी दी तरफों सारे भारत दे वड्डे वड्डे शहर खास करके सूबियां दी जिहड़ी राजधानियां सन उन्हां दी सी, जथेदार साहब भी नाल सन, 4-5 जथे और 4-5 विद्वान पहुंचे सी गांधी धाम गुजरात दे। उत्थे लंगर दी मंग कर ली सी एक गुजराती सज्जन ने, भी लंगर मैं बनाना है मैनू इजाजत दिओ, तो सिंह सभा ने मंग लिया, ठीक है श्रद्धा नाल कहिंदा पिया ते चलो ये बनावे, तो अपने लांगरी भी गुजराती ले आया सी। दीवान दी समाप्ति हुई, पंगतां लगियां, अखीर दे जाके दास बैठा सी नाल होर साथी, ते साग सब्जियां जिहड़ियां अग्गे रखियां गईयां ना दाल मिठी सी, मैं कहा हद हो गई इन्हां कोल लूण दी थां ते चीनी पै गई, ते मैनू उत्थों दे सिकत्तर साहब कहण लगे नहीं गैनी जी ये दाल दे च मिठा ही पांदे ने, गुड़ पांदे ने, और कोई होर सूबा नहीं पांदा ये पांदे ने, ये ते दाल भी मिठी बनांदे ने, नमक भी पाणगे रज के गुड़ भी पा छड्दे ने। सारे भारत दा खाना एक नहीं है, गुजरातियां दा खाना कुछ होर है, मराठे कुछ होर खांदे ने, तमिल कुछ होर खांदे ने, कन्नड़ कुछ होर खांदे ने, तेलुगु कुछ होर खांदे ने, राजस्थानियां दा खाना कुछ होर है। पहले तो सारे भारत दा खाना एक नहीं है, सारी दुनिया दा खाना एक कैसे करांगे? फिर सारी दुनिया दियां इच्छावां, घर दे चार बच्चे होंदे ने, उनकी मुख्तलिफ राय होंदी है, वख-वख इच्छा होंदी है, खाण दी सहमति पीण दी सहमति इच्छा एक। गुरु नानक ने एक नुकता बयान किया है, मुख्तसर मैं थोड़े सामने रखा, एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। इष्ट एक होना चाहिए, कोई गल नहीं, खाना एक नहीं है तो कोई गल नहीं,
पीना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पहनना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, इच्छा भी एक नहीं है कोई गल नहीं, वख वख इच्छा है भी चलेगा। उपासना का ढंग अगर एक नहीं है कोई गल नहीं, नमाज भी चलेगी, पूजा पाठ भी चलेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बोल मैं थोड़े सामने रखा। सतगुरु कहते ने काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू घट समझिया गया, घट बयान किया गया, इस वास्ते बड़े भारी मुगलते ने। सतगुरु कहते ने काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, काहू होए के तुरका पुकारे बांग दे तो हो। हे प्रभु किधरे तू हिंदू है, तू ही हिंदू है, गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, तू ही कर रहे हैं, ये तू ही है। पर काहू होए के तुरका पुकारे बांग दे तो, किधरे तू हिंदू नहीं है मुसलमान है, मुनारे से चढ़ के बांग दे रहे हैं, अजान दे रहे हैं, पर तू ही है। इतनी समदृष्टि गुरु गोबिंद सिंह जी की। काहू होए के हिंदू आ गायत्री को गुपद जप्यो, काहू होए के तुरका पुकारे बांग दे तो, कहूं को बकाव होए पुराण को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान ले तो। किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है, वेदां दा ज्ञाता है, किधरे तू कुरान दा हाफिज है, सारी कुरान तेनो हिफज है। ऐ पुराणा दे ज्ञाता, ऐ कुरान दे हाफिज, प्रभु तू ही है। इतनी समदृष्टि। कोई गल नहीं, कोई कुरान पढ़ता है तो ठीक है, कोई नमाज पढ़ता है तो ठीक है, कोई पूजा पाठ करता है तो ठीक है। सतगुरु कहते ने इष्ट एक होना चाहिए, एक इष्ट खुदा परमात्मा अकाल पुरख, नाम उसके अलग होवन। नामा ते भी मनुख लड़ पेंदे ने। मैं देखना यह जड़ा सूरज है यदा एक नाम नहीं है, इनू संस्कृत दे भान कहते ने, रवि कहते ने, सूरज कहते ने, फिर इसनू परशियन दे आफताब कहते ने, खुर्शीद कहते ने, इनू इंग्लिश दे सन कहे जाते ने। हुण झगड़ा इस गल का नहीं, तू खुर्शीद क्यों कह रहे हैं रवि आख, तू रवि क्यों कह रहे हैं सूरज आख, सारे नाम सूरज दे, और सूरज दे नाम करके झगड़ा नहीं है। पर जिहड़ा महासूरज परमात्मा है, परमात्मा दे अखरी अर्थ ने महाचानन, जो हजारां सूरजां नू जन्म देने वाला है, कई कोट ससियर सूर निकत्र, करोड़ां सूरजां नू जन्म देने वाला है, वो महासूरज, उहदे अगर बहुत सारे नाम आवन ते झगड़ा, अल्लाह ते राम दा झगड़ा। गुरु नानक कहंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, ए प्रभु मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने, कुर्बान जाना। इस तरह का घर एको ही मिलेगा। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, जितने भी तेरे नाम है कुर्बान जाने। खाना एक नहीं तो कोई गल नहीं, इससे की झगड़ा करना, पहनना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पीना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, इच्छा एक नहीं है तो कोई गल नहीं। प्यो पुत्र की इच्छा भी अलग अलग होंदी है, दो बिरावां दी भी इच्छावां मुख्तलिफ हो जांदियां, सारे संसार की इच्छा एक किवें करांगे। उपासना का ढंग एक नहीं है कोई गल नहीं, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई प्राणायाम की साधना कर रहा है, कोई नेति धोती कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई गल नहीं। अगर उपासना का ढंग एक नहीं है तां भी चलेगा। महाराज कहंदे ने एक गल नहीं चलेगी, इष्ट एक होना चाहिए, ओही एक परमात्मा, भावें उसनू खुदा आख लो, भावें उसनू राम आख लो, भावें उसनू वाहिगुरु आख लो, करतार आख लो, इष्ट एक चाहिए, फिर सारे ब्रह्मण विच एकता हो सकती है। और सारे उसे तो आए ने, उसे एक तो ही सारी अनेकता ने जन्म लिया। अनेकता इंज है जिवें सागर एक है ते लहरां अनेक ने, सूरज एक है किरणा अनेक ने, परमात्मा एक है संसार ते अनेक ने, जीव जंतु ते अनेक ने, इस सारी अनेकता दा उस एक नाल संबंध जुड़े होया है। इस वास्ते सारियां ही लहरां भरा भरा ने, भैण भरा ने, सारे एक सागर दे च ने। रब नाल जुड़िया होया मनुख सारे संसार दे नाल भाईचारा बनांदा है। मैं फिर लफ्ज दोहरावां, जेड़े विचार मनुख नूं मनुख नाल दूर करदे ने, उह विचार मनुख नूं परमात्मा तों वी दूर करनगे। जेड़े विचार बंदे नूं बंदे दे नेड़े नहीं आण देंदे, इह विचार बंदे नूं रब दे नेड़े वी नहीं जाण देणगे।
दूर रहेगा। हकीकत है, सच्चाई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल ए सबको उम्मीद हम आपन कीना, हम सब ना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा तो मेल कियो मेरे राजन। करम उना दा ए हरि मंदिर साहब दी रचना सरोवर दिच की थी, सरोवर गुरु रामदास जी ने बनाया है। अमृतसर वसाण दी ते सरोवर नू बनाण दी कल्पना गुरु अमरदास जी दी, कार्य आरंभ कीता गुरु रामदास जी ने। सरोवर दिच हरिमंदर बनाया गुरु अर्जन देव जी ने, हिफाजत दा सारा इंतजाम कीता गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने अकाल तख्त बना के। एक शहर दिच गुरु नानक दे इतने स्वरूपां दी महिमा है, मेहनत है, ताई उसनों सिखी दा केंद्र गिणदे ने। लेकिन गजब दी गल, ऐसे हरि मंदिर दी नहीं गुरु अर्जन देव जी मियां मीर तो रखवांदे ने, और मियां मीर अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी दे कदमां ते रखदा। बस थोड़ा जिहा विखाद इत्थों ही शुरू हो गया, इत्थों ही शुरू हो गया। सता सत नाल टकरा गई, दो ताकतां होंदियां ने, एक बाहर दी एक अंदर दी। बाहर दी ताकत नूं कहिंदे ने सता, अंदर दी शक्ति नूं कहिंदे ने सत। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी दी कोशिश सी कि सता सतवादी दे हाथ च होवे, होई है पर बहुत थोड़े, कदी कदाई राजा जनक। उह सतवादी भी सी, सताधारी भी सी, उह संत भी सी ते राजा भी सी। राम नूं लै लईए, वकत दे अवतारी पुरश ने, हिरदा संत वरगा है, पर राजे ने हकूमत है। कृष्ण अवतार है, संत है, पर राजा है द्वारका दा। गुजरात दे च छोटा जिहा इलाका द्वारका, ये द्वारका दे राजा सन, नाल छोटे जिहा कुछ चार पांच या दस वी पिंड होने ने द्वारका, ये उत्थों दे महाराजा सन, राजनीति चलांदे सन। बाहर दी सता भी कोल सी, अंदर दा सत भी कोल सी। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नारा लाया, अगर सता सतवादी दे हाथ च नहीं होवेगी तो सता जुल्म करेगी, सताधारी अपने पैरां थले मजलूमां नूं रौंदेगा, लिताड़ेगा। सता सतवादी दे हाथ च होवे, संत ही सिपाही होवे, सिपाही संत होवे, वो अंदरों अत्यंत कोमल होवे ताकि इंसाफ कर सके, वो अंदरों अत्यंत मिठास नाल भरिया होवे ताकि उहदे अंदर वितकरे ना होन। सता सत नाल टकरा गई और आदकाल तो टकरांदी रही। मिस्र दी सता मंसूर नाल टकरा गई सी, इतना वड्डा फकीर विचारा सोली ते चढ़े। सरमद सूफी संत है, दिल्ली दियां गलियां विच नगन घुमदा सी, इनू पकड़ के औरंगजेब दे दरबार विच पेश कीता गया। नंगा क्यों घुमदा है? भावें उसने सीधा ही कह दिता सी औरंगजेब नूं, तू दस मैं केड़ी चीज नूं ढकां, तैनू मेरे विच क्रोध दिखाई देंदा है, लोभ दिखाई देंदा है, वासना दिखाई देंदी है, दुश्मनी दिखाई देती है, अगुणा नूं ढकना पैंदा, गुणा नूं ढकण दी लोड़ नहीं है। गंदगी नूं ढकना पैंदा, फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं है। और बड़ी करारी चोट की थी, तू कपड़ियां दे च भी नंगा है, मैं नंगा भी ढकया होया। भावें तू बड़े कीमती कपड़े पाए ने, पर भरावां दा कतल ते उन्हां दा खून तेरे कपड़ियां च भी बाहर आ रहा है। तो प्यो नूं जिहड़ा तड़पा तड़पा के मारिया है, ये जुलम तेरे कपड़ियां तो भी बाहर आ रहा है। इंसाफ दया प्रेम मेरी नग्नता तो भी प्रगट हो रहा है, मैं नंगा भी ढकया होया। तू ढकया होया भी
ਨੰਗਾ ਪੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਕਿਰਾਂ ਐਬੇ ਦੀਦ ਬੇਅਬਾਂ ਰਾਹ ਲਿਬਾਸ ਉਰਿਆਨੀ ਦਾਦ। ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੁੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸਨੇ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਿੱਚ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਨਗਨ ਫਕੀਰ ਨੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਸਰਮਦ, ਉਹ ਹੈ ਇਰਾਨੀ ਫਕੀਰ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਧੋ ਪਈ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੁੰਨ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾੜ ਸੀ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੇ ਖੂਨ ਖਾਰ ਜਿਹਾ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਲਿਬਾਸ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚ ਮਸਤੀ ਚ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਭੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਾਂ ਦਰਬਾਨ ਅਬਾਇਤ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਸੁਰਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਖਾਰ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਦਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਾਂ ਦਰਬਾਨ ਅਬਾਇਦ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਸੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਬਬਾਇਦ ਤਾਂ ਸਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਆਇਦ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਆਵਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 1947 ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਹਿੰਦ ਕੇ ਉਲਮਾ ਵਾ ਉਕਰਾਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ, ਹਿੰਦ ਕੇ ਉਲਮਾ ਵਾ ਅਕਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਮਦ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਤਾਲਾ ਆਪਕੇ ਤਮਾਮ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਮਦ ਜੈਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਾ ਕਤਲ ਨਾਕਾਬਲੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਤਾਲਾ ਆਪਕੇ ਤਮਾਮ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਮਦ ਜੈਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਾ ਕਤਲ ਨਾਕਾਬਲੇ ਮਾਫ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਇਹ ਸਰਮਦ।

सन्मान योग गुरु रुखसात सिंह जीओ फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दे अनंत पहलू ने अनंत रूप ने और हर पहलू दी अपनी अपनी विचार है। धर्म दी दुनिया विच कर्म दी बहुत वड्डी चर्चा है। अज आपां इसनूं ही गुरबाणी दी रोशनी विच पढ़न दी समझण दी सोचण दी विचारण दी कोशिश करदे हां। करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है, उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती। कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसी प्रकार का लोभ लालच रख के उसके फैसले नूं उसके इरादे नूं ना मोड़िया जा सकता ना तोड़िया जा सकता। इस वास्ते कहिंदे ने वो अटल है, उसका न्याय अटल है, वो आप सच है, उसका न्याय सच है। एक गल वखरी है कि दुनिया दे जिथे इंसाफ मिले सारे अरब दे ईरान अफगानिस्तान ते भारत दे उसनू अदालत कहिंदे ने। अदालत अदल कहिंदे ने इंसाफ नू, अदालत इंसाफ दा घर अखरी अर्थ ये बनते हैं। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ दा घर। मुनसफ जिहड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे, अदालत जिथे अदल होवे जिथे इंसाफ होवे। बाकी दुनिया बारे तो शायद मेरी इतनी जानकारी ना हो, पर भारत बारे मेरी जानकारी है। उत्थे ते अगर पैसे हैं तो इंसाफ खरीद लो, अगर ताकत है तो इंसाफ खो लो। जे ताकत नहीं है इंसाफ खोण दी, ते जे पैसा नहीं है इंसाफ खरीदण दी, तो इंसाफ मुफ्त दे चथे किसे नूं नहीं मिलदा है। तो बहुत सारे देशों भी इस तरह नाम ही आता है अदालत। अदल कितने मिलता है, इंसाफ कितने मिलता है, पर सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। उसके दरबार विच की आता है, करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। उसके दरबार दे कर्मां दी विचार आउंदी है, मनुख की शकल सूरत दी नहीं, मनुख दे कर्मां दी। इस नूं खोलण तो पहले मैं अर्ज करा, इस पृथ्वी दे उत्ते जिस ते असीं रहिंदे आं, दो तरह की दुनिया धर्म ने मनी है, भोग भूमि कर्म भूमि। एक ओ जीव ने जो सिर्फ इंज कह लो जीवन बतीत करने लिए आए ने, भोग भोगन लिए आए ने, खा लेना है पी लेना है सो लेना है ते शरीर दी जरूरतां दी पूर्ति कर लेनी है, बस पशु जगत भोग भूमि। मनुख नूं आख्या गया है ये भोग भूमि दे नाल नाल कर्म भूमि है, ये कुछ भोगन दे नाल नाल करन लई आया है। इस वास्ते सिर्फ भोग भूमि नहीं है, भूमि कहने धरती नूं, पशु की ने भोगां दी धरती, मनुख की है कर्म भूमि। इस वास्ते साहिब कहने कर्म भूम में भोवो नाम, ये तो कर्म भूमि है। मनुख कर्म भूमि है, पशु भोग भूमि ने। पशु अपने कर्मां अनुसार विकास नहीं कर सकता, इस तरह दे ना उसके शरीर की बनतर है, ना ही इस तरह उसके मन की बनतर है। वो
विकास कर्मां दे उत्ते असवार होके नहीं कर सकता, अगां नहीं वध सकता। प्रकृति अपने सुभाव दे मुताबक उसनू अगां तोरदी है। इंज कह लो, पशुआं दा विकास प्राकृतिक है, परमात्मा दी मर्यादा अनुसार है। तो वह मर्यादा क्या मनुख नाल कम नहीं करती? कम करती है। मनुख नाल परमात्मा दी सुतंत्र मर्यादा कम करती है, भी इत्थे सुनसुर सुतंत्रता दे दी है, तेरी मर्जी है तू की करना है। मनुख नू कर्म दी छोट दे दी गई, एक कर्म भूमि है। इस धरती रेच जेहा बीजे सो लूणे कर्मा संदड़ा खेत। जैसा जैसा तू बीज बोवेगा वैसा वैसा तेरे झोली रेच उसका फल पवेगा, एक कर्म भूमि है। चूंकि खुल इतनी परमात्मा ने दे दी मनुख नू, तो सतपुरशां ने ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा खुल भी ते तेरी दिती हुई है, साडा की? साडे कोल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साडे कोल। इस तो आम लोगों ने बड़े गलत अंदाजे लाए, साडे कोल की है? करन करावन वह आपे है। जे साडे कोल सुतंत्रता भी है तो उसकी दिती हुई हिसाब नाल ठीक है, करन कारण है, सब कुछ वही कर रहे हैं, पर उसने सानू खुल दिती है। तू सच भी बोल सकदा है, झूठ भी बोल सकदा है, अगां भी जा सकदा है, पिछे भी जा सकदा है, उपर भी उठ सकदा है, थल्ले भी जा सकदा है, इतनी खुल दिती है। पर चूंकि खुल उसे दी दिती हुई है, तो जिन्हां दे अंदर ब्रह्म ज्ञान घटित होया उन्होंने कहा भी ठीक है, खुल तो दिती अगे जाण दी पिछे जाण दी, सच भी बोल सकदे हां, तेरे नाल जुड़ भी सकदे हां, तेथों दूर भी हो सकदे हां, और खुल ते तेरी दिती हुई है ना, तेरी खुल करके तेरे तक पहुंचे ते तेरी खुल करके दूर हो गए तेथों। इस वक्त साडे कोल की है? कुछ भी नहीं। उम्मीद है पकड़ दे आई होगी गल आपते। कई दफा सतपुरश जिस शिखर के उत्ते बोलते हैं ना, आम लोगों की वह शिखर नहीं आती, उन्हां दे खड़े होने का तल कुछ होर आता है, और जिस तल तो बोल रहे होंगे ने वह तल कुछ होर है। इस वास्ते कई दफा सतपुरश कहिंदे कुछ ने जगत समझदा कुछ है, यह भी मैरज करते हैं। महापुरश ने आख्या कुछ है, गुरुआ ने आख्या कुछ है, जगत ने समझिया कुछ है। कारण ऐसा क्यों होया है? तालमेल नहीं बैठे। गल बहुत उच्ची सी, बहुत उच्ची सी, सिर दे उपरों लंघ गई। जद ये आख्या जाता है कर्म कर, ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकरत कर कर लीजे रे मन, तू गिला क्यों करता है? शुभ कर्म करके सुखा नाल अपनी झोली भर ले, जो कुछ तू जगत दे च प्राप्त करना है कर ले, तेन खुल है, तेन धरती दिती है, ते बीज बोन दी तेन खुल दे दिती है। तू केसर बीजना है कि निम बीजनी है, तू जौ बीजने ने कि चने बीजने ने, तू अंगूरां दियां बेलां लानियां ने कि किकर दे बीज बोने ने, ये तेरी मर्जी है, खुल है। तेन धरती भी दे दिती, तेनू बीज बोण की खुल भी दे दी। पर एक दफा बीज तू बो दिता ते बोण तो बाद तेनू ख्याल आवे मैं ते अंबां दे बूटे लाने सन, ला बैठा किकरां दे, अच्छा हुण परमात्मा मैथों भुल होई है, इन्हां किकरां नू ही अंब ला दे, नहीं लगणगे, ऐसा नहीं होवेगा। ये उसका नियम नहीं है, ये उसकी मर्यादा नहीं है। बाबा फरीद कहिंदे ने, लोड़े दाख बिजोरिया किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट, लांदा है बूटे किकरां दे मंगदा है अम, चरखे दिच कतदा है उन मंगदा है रेशम, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। कतदा ते उन पे है, बुणदा ते उन पे है, ते मंगदा है रेशमी कपड़ा खड्डी तो, बुणदा ते किकर पे है, मंगदा अंब है। ऐसा हो है, बीज मनुख दुखां दे बौंदा है,
ਮੰਗਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਗਿਲਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਖਵਾਦ ਨ ਕੀਜੇ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕਰਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਰੇ ਮਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਵ ਕੋ ਨਾਥ, ਉਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਥ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਵ ਕੋ ਨਾਥ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਅੰਬ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਉਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੀਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਛਡਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਲਿਆਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਪੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੇ ਵੀ ਪੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀ, ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਜਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਦ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਮੰਗਾਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਇਤਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਤੋ ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ।
अज तक सनातनी जगत विच महात्मा बुद्ध का सन्मान नहीं बन सकया। बौद्ध भिक्षुआं लई अज तक जगह नहीं बन सकी, ये तो नास्तिक है। पर एक सच्चाई है, अगर वह नास्तिक है तो फिर दुनिया च कोई भी आस्तिक नहीं है। इतनी गहरी ध्यान साधना करने वाला, इतना भरोसा रखने वाला, दुनियावी सारे सुखां नूं एक पासे सुट के अध्यात्मक सुख की तलाश करने वाला, तो उसनों कह दिए नास्तिक। क्यों कहा गया? कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। उसने अपने बौद्ध भिक्षुआं नूं कहा, यह फिक्र बाद च करना, कर्म ही भगवान है। क्योंकि जो दुख मिलना है, जो सुख मिलना है, थानू कर्म नाल मिलना है। जो आनंद मिलना है, जो खेड़ा मिलना है, थानू कर्म नाल मिलना है। जो ज्ञान मिलेगा, जो शांति मिलेगी, थानू कर्मा नाल मिलेगी। तो जब मिलना ही कर्मा नाल है, तो फिर कर्म की फिक्र करो। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालिए। जे तू अपना ही कीता पाना है, तो फिर अपने कर्तव्य प्रति जरा सुचेत हो जा। कहिंदे ने मनुख होवेगा सुचेत, अपने कर्मां दे प्रति सुचेत नहीं है। अगर किधरे कर्मां दे प्रति सुचेत आउंदा ते दुनिया इतनी दुखी नहीं आउणी सी। कहिंदे ने हवा व्यापक है, आकाश व्यापक है, दुख भी व्यापक है। जिथे तक आकाश पसरे है, उत्थे तक ही दुख है। जिथे तक पवन झूलती है, उत्थे तक ही लोगों के घर च दुख झूलते पे। मनुखता दुखी है, यानी इसका यह मतलब नहीं कि पशु पंखी दुखी ने, कतई दुखी नहीं है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, कोई पशु दुखी नहीं, कोई पक्षी दुखी नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा दुखी नहीं। सब सुख दे च ने, पशु सुख दे च जी रहे हैं, देवते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आनंद दे च जी रहे हैं। बस दुख केवल मनुख की दुनिया च। और साहिबानों इत्थे तक कहना पिया, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। समो जगत, मनुखी जगत, मैं फिर अर्ज करा, बाकी नहीं, बाकी सब सुख दे च ने। कारण पशु जो जी रहा है लोड़ां दे तल ते, मनुख जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते। लोड़ां दी पूर्ति ना होए पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होए मनुख तड़पदा है। बगौर मुताला करना, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी ते पशुआं दी तरह मनुख भी सुखी होना सी। उन्हों प्यास लगी है पानी मिल जाए, उन्हों भुख लगी है खुराक मिल जाए, उसकी शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति हो जाए, बस मस्त है, सौ जांदा है, आनंद लैंदा है। पशु सुखी ने, महापुरुष ते देवते आनंद दे च ने, मनुख दुख दे च है। दुख सिर्फ थानू मनुख दी दुनिया दे च मिलेगा, या उन्हां पशुआं कोल दुख मिलेगा जिहड़े विचारे मनुख दी कैद दे च ने, मनुख दी संगत दे च रहिंदे ने। उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा दिता है, जिस ढंग नाल उह जीवना चाहते ने उस ढंग नाल मनुख नहीं जीण देंदा पिया। वह दुखी हो सकते हैं, वह पीड़ित हो सकते हैं। वरना दुख सिर्फ मनुख दे कोल है, कायनात दे च, इस ब्रह्मंड दे च दुख होर किधरे भी नहीं है। बनस्पति खेड़े च है, पशु सुख दे च ने, कीड़े मकोड़े भी सुख दे च ने, यह भी मैं अर्ज करते हैं। एक बिष्टा का जंतु भी सुख दे च है, एक गंदगी दे च लिपटिया होया सूअर भी सुख दे च है। मैं फिर अर्ज करा, एक मनुख दुख दे च है, एक मनुख की संगत दे जिहड़े पशु रह रहे हैं मनुख की कैद दे च, वो बेचारे दुखी हो सकते हैं। वरना पशु दुखी नहीं ने, पंछी दुखी नहीं ने। पशु जी रहे ने लोड़ां दे तल दी पूर्ति ते, लोड़ां पूरियां हो गई सुखी। मनुख लोड़ां दे नाल नाल जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते। लोड़ां पूरियां ना होवन पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां पूरियां ना होवन मनुख बेचैन होंदा है, मनुख तड़पदा है। ख्वाहिशां दा एक होर बड़ा भयंकर नियम है,
एक ख्वाहिश पूरी होवे ना ते पूरी होंदे होंदे वो दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। जैसे एक मनुख जमीन तो रुखसत होंदे होया वड्डा हो गया, जवान हो गया, व्याया गया, बुढ़ा हो गया, जमीन तो रुखसत होंदे होंदे दो चार पांच सत बच्चों नूं जन्म दे जांदा है, पिछे अपनी संतत छोड़ जांदा है, अपना खून छोड़ जांदा है। जमीन तो रुखसत होंदे होंदे मनुख दो चार बच्चे छोड़ जांदा है, एक ख्वाहिश पूरी होंदे होंदे एक ख्वाहिश मरदिया मरदिया पांच दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। हुण पूरी एक होई है ते दस होर पैदा हुई हैं, फिर उन्हां च पूरी एक होई है ते फिर दस भी होर पैदा हो गई ने, तो रोज रोज ते ख्वाहिशां वधदियां जाणगियां, ख्वाहिशां दी भीड़। इस तरह जिवें मौत दर घट जाए ते जन्म दर वध जाए तो मनुखां दी भीड़ हो जाती है। ख्वाहिश पूरी ते कोई कोई होंदी है, ये भी मैं अर्ज कर दें, होंदी वह भी कर्म अनुसार है, उंज नहीं। कुछ संत महापुरुखों के डेरे इस वास्ते चल पैंदे ने, जे सौ बंदे गए ने ते सठ दा ते उंजी कर्म बनन वाला होंदा है, उंजी गल सिरे चढ़न वाली होंदी है। वो जिहड़ी सठ बंदियां दी गल सिरे चढ़ जांदी है ना, वह कहिंदे ने इस डेरे करके संत करके साडी गल बनी है, वह फिर सठ कम से कम होर सठां नूं ले आंदे ने, उन्होंने चो भी कुछ एक गल तो उंजी बनन वाली होंगी, जो डेरे ना भी जाते भी बननी सी, यह भी मर्ज करते हैं, जे ना भी तीर्थां ते जाते भी बननी सी। बस पखंड इस तरह दुनिया दे वधदा है अग्ञान दे आसरे ते। एक ख्वाहिश पूरी होंदिया होंदिया दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है, तो इस तरह ख्वाहिशां की भीड़ वधदी जांदी है, वधदी जांदी है। पशु लोड़ां दे तल ते जींदे ने, मनुख ख्वाहिशां दे तल ते जीवदे ने, लोड़ां दी पूर्ति ना होवे ते पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होवे मनुख तड़पदा है। और सारियां ख्वाहिशां किस दियां पूरियां होंदियां कता ही नहीं, एक दिन मनुख ही पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, ख्वाहिशां कितनी पूरियां होंदियां ने, हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। अली कहिंदा एक एक श्वास दे अंतिम समय कितनियां ख्वाहिशां निकलदियां जिहड़ियां अंदर पईयां सन, जगह मल के बैठिया सन, भई अज साडी गल बनेगी, अज साडी गल बनेगी, गल की बननी, विश्वास ही निकल गया है, हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, दुख केवल मनुख की दुनिया च है। ऋषिकेश दे अज तो कोई गालबन 25-26 साल पुरानी गल होगी, रामकली राग का यह शब्द चल रहा है, सहन सरदान दे इंद्र रोआया परस राम रोवे घर आया, जब जी साहब तो लेके उथे रागमाला तक संपूर्ण कथा होंदी है, और उथे एक नियम है 5 साल भोग पाते ने लाजमी ताकि विद्यार्थियों नूं ज्ञान मिलता रहे। उस दौरान एक महीना दास भी हाजरी भरदा रहे, जदों दास कथा कर रहा सी रामकली लाग चलिया तो यह शब्द भी आ गया जिस दिया आखलियां पंक्तियां सन, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए अवरी कर्म न लेखे पाए। ये पंक्ति मनुख ने अपनी तरफों बनाई हुई ने, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार, इस तरह की पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है, इस तरह नहीं है, ये तो लोगों ने अपने कोलों बना लिया है, जिन्होंने बोध नहीं है, समझ नहीं है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए अवरी कर्म न लेके लाए। इसकी वजाहत दास ने किधरे 2 दिन की थी। बड़ा एक दार्शनिक सियाणा साधु सिंध दे इलाके दा सी, भेख भगवा, अजकल उसका डेरा करनाल दे च बहुत ज़ईफ हो गया, वो भी किधरे बैठा सी, कथा की समाप्ति तो बाद खड़ा हो गया, साधुआं दा इकट्ठ सी जो 30-40 स्रोते बैठे सन, साधु ही सन, निर्मले उदासीन।

0: सतगुरु कृपा बख्शिश कर।
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
2: है।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखा दा कलेशा दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाति पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: जोग करे सुप्रभ के रंग
1: सदा सदा बसै हर संग
0: सह सुपाई हो वैसो हो
1: करने हार पछाने सोई
0: सब का किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सत सदृष्टाना
0: जिसकी उपजे तिस माही समाई
1: सुख निदान उन्हों।

0: सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दिती है। शायद इसे वास्ते जफर कहिंदा है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर, मलिक को, देव को, जिन को, परी को, ऊरे गिलमा को, मनुख तो वद परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख दा ही भविष्य है परमात्मा होना, पशुआ दा भविष्य अजय मनुख होना है, बनस्पति दा भविष्य अजय पशु होना है, पत्थरां दा भविष्य अजय बनस्पति होना है, केवल मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी दा महीना पिछलिया इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन, अमृत वेले मैं नितनेम ब्याह करा ते फोन आई दिल्ली तो, मैं खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 बजे कि कौन फोन करता, दिल्ली तो एक नौजवान पूछना चाहता है मैनू, कोई मस्किन जी सुने है तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं हाँ जानना, भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कहन लग्या कि फिर तुसी आ रहे हो ना दिल्ली, की भाई संत बाबा अतर सिंह जी दी बरसी ते मैं पहुँचना सी, तुसी आ रहे हो, असी पोस्टर पढ़े ने, असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानने वास्ते। मैं कहा उदों ते गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देना, तुसी हुणे ही पूछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस देंगे, तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार का, सारे संसार दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी, चंगा कारोबार मिल गया परेशानियां नहीं जानगी, बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन उच्चा महल मकान मिल गया बेचैनी नहीं जाएगी, बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी दा धनवान होवे, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर होवे, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहिंदे ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाई। कहिंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए, की हो गए? सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा है, तो कबीर कहिंदे होवेगा परमात्मा सच, आपां वी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई, मैं सच हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। मैं कह सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नू दिते हुए ने, सीमत ने, ये असीम हो सकते ने, उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए? पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना है। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया का, और मुखी सजणा का बार बार धन्यवाद। फुल चुगदी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott.

0: सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा मन सचा दीवान सचा तेरा हुकम सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तो दाखे लाख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ते हैन सच जो मर जमे सो काचन काच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा ना वड्डी वड्याई सचदियां वड्डी वड्याई निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई जा बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुत नरदात वड्डी वड्याई जा पिया नानका नकथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा एक अक सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मी करे विनाश इक ना पहाने कट ले इक ना माया विच निवास ए पियाक न जा पी जिक सेने रास नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जीव पाए।

0: and love.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

कोड़ी बिन सतगुर के नै न पायो बिन सतगुर के नै न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है।

दुखदार उस ग्रुप है आजांस तम ना होई। तुम करता करना में नहीं जाहू करी ना होई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंतर न जाई लख्या रहाओ। जात मैं जो जोत मैं जाता कल कला भरपूर है। तू सच्चा सहस

0: जो जो रुसनावणी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसन इतने थोए को और सुचे ना किए बहन जे पिंडा तोहे सुचे सही नानक जिन मन वसिया सोई पौड़ी तुरे पलानी पौन वे घर रंगी अरम सवारिया
1: उठे मंडा माड़िया ला बैठे कर पसारिया चीज कर मन पान दे हर

आप ही गुरु रूप हैं ते आप ही सारे जीवन विच व्यापक हो के सेवक भी आप ही हैं, क्योंकि तेरे तो बगैर कोई होर चीज़ है ही नहीं है, सब कुछ तू ही तू है। तेरे तो बगैर जरा जरा च तेहे परमात्मा तू आप ही व्यापक हो रहा है। तू आपे गुर चेला है, आपे चेला रूप भी तू आप ही गुर, चेलों के विच भी सेवक के विच भी तेरी ही चेतन सत्ता है, तू सारे च व्यापक हो रहा है। गुरु रूप भी तू आप है, सेवक रूप भी आप है। इस तरह गुरु विच दे तुझे त्याई, तू आप ही कृपा करके गुरु दे राही जीवन अपने नाम की दात दिना है। गुरु की कृपा देना तेन उत्ते आ जीव जिन्हें तो तू आप कृपा करदा गुरु दे राही। जो तुद सेवा है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई। हे परमात्मा, जिहड़े तेरा सिमन करदे है गुरु दे राही, तेरी आराधना करदे है सिमन करदे है, वह तेनों जप जप के ते तेरा रूप हो जाते हैं। तो तू आप ही अपने उन्होंने सेवकों की पैज रखता है लोक परलोक विच। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जाणो मानस देहा। हरी ते हरी दा सेवक च कोई फर्क रहिंदा नहीं है। इस तरह हर हर जन दोई एक है, बिब विचार कछ नाहे। जल ते उच तरंग ज्यों जल ही विखे समाए। हरी ते हरी दा जन एक ही हो जाता, जिस तरह पानी च पानी मिल के एक हो जाता है। इस तरह ही परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु जेड़े तेरी आराधना करते सिमरन करते हैं, जो तुझ सेवा है सो तू है हुए तेरा रूप हो जाते हैं। तो सेवक पैज रखाई, तू आप ही अपने सेवकों की पैज रखना रख्या करता है। भंडार भरे भगती हर तेरे, जिस पावै तिस देवाई। हे परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु, तेरे दर ते सेवा भगती दे भंडार भरे हुए हैं, लेकिन जिन्ना ते तू आप कृपा करके गुरु दे राही जिन्ना नू अपने नाम दी ए भगती दे भंडार बख्शदा है। भंडार भरे भगती हर तेरे, जिस पावै तिस देवाई। जिहड़े तेरी रजा विच जिन्हां नूं तू आप कृपा करके गुरु दे राहीं इह सेवा भगती दी दात बख्शदा, उही प्राप्त करदे हन। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस देई। जिन्हां नूं सतगुरु जी कृपा कर दिंदे आ, परमात्मा वाहिगुरु दी प्रेमा भगती बख्श दिंदे आ, फिर भाई वह परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु नूं पा जांदे, चंगे लग जांदे हन। फिर सदा वास्ते उन्हां दी झोली च परमात्मा दे नाम दी दात पै जांदी है। उस परमात्मा वाहिगुरु दे नाम दे खजाने विच भाईवाल बन जांदे हन, उन्हां दी सांझ बन जांदी है। तो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन भै नदाना। खावह खर्च हराल मल भाई, तोट ना विवाद दो जाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर निफल सब चतराई। लेकिन वो जो परमात्मा वाहिगुरु का नाम का खजाना है, वह भाई अपनी चतराइया के नाल सियाणप के नाल प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपनी कीतियां चतराइया सियाणपां सब निफल हो जाएं, व्यर्थ चल जाएं। हाँ, जिस तू दे सोई जन पाए, जिन्होंने परमात्मा तू आप कृपा करके बख्श देना है, उही तेरे नाम के खजाने पाते हैं। क्यों? चतराई सियाणपां कितने काम ना आई है। तुट्ठा साहब जो देवै सोई सुख पाई है। अपने चतराई सियाणपा दे नाल परमात्मा दे नाम की दात प्राप्त नहीं की जा सकती। हाँ, परमात्मा काल पुरख वह त्रुट जाए, कृपा करे, तो गुरु के राही यह दात प्राप्त होंगी है। सिमर सिमर सिमर गोरे अपना, सोया मन जागाए। धन धन साहब श्री गुरु रामदास पातशाह फरमान कर दे के, हे परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु, मैं गुरु की शरण चा के मन करके शरीर करके बचन करके मैं जदों तेरा नाम सिमरदा गुरु की कृपा दे नाल, गुरु दे राही सिमर सिमर
ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣਾ ਹੈ।

हे परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, मैं दास तेरे दर तो यह दान मंगना हाँ। यह दान मेरी झोली च पा देवो। की दान सतगुरु ने दसिया कि मंगना चाहिए सानू? हर दासन दास कराई। हे परमात्मा तेरे जेडे दास है ना, उन्हां दे दास बना देवो मैनू। यह दान झोली च पा देवो। जेकर झड़के तां मीठा लागै, जे बख्शे तां गुर वडियाई। हे परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, जे मैनू गुरु मेरे भुल्लां तों झिड़कियां भी देवे, क्यों भुल्लां करनियां ते झटकां भी दिखाणियां हैं ना। फिर हुण भुल्लावें करिए ते झटकां तों भी गुस्सा करिए, फिर भला कित्थे होएगा साडा। गुरु साहब जी ते साडियां साडे कीतियां होईयां भुल्लां नूं बख्शण वास्ते झिड़कदे आ, ते जे असीं गुरु दी झटक तों भी गुस्सा करिए ते भुल्लां भी करी जाइए, फिर बख्शे कित्थे जावांगे। ते सतगुरु धन गुरु रामदास पातशाह जी कह रहे हैं कि जे मैनूं गुरु झिड़के भी ते मैनूं ओह चंगा लगदा, मिठा लगदा है। जे बख्शे तां गुर वडियाई, जे मैनूं गुरु बख्श दे मेरी भुल्लां नूं ते इह गुरु दी बख्शिश रहमत है, उहदा परउपकार है, उहदा बिरद है। गुरमुख बोला है सो थाए पाए, मनमुख किस थाए ना पाए। जेड़े भाई गुरु की शरण च रहिंदे, गुरु की बाणी पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, सिमरन करते हैं, तो सब कहते गुरमुख बोले सो थाए पाए। उन्हों का एक एक लफ्ज़ बोलिया जड़ा है परमात्मा वाहिगुरु दरगाह दे विच प्रवान हो जाता है, क्योंकि वह ऊट पतंग बोलते नहीं हैं जेड़े गुरमुख हैं। वह गुरु की बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, जां मिठा बोलते हैं, कभी कौड़ा बोलते नहीं हैं, कभी खरवा बोलते नहीं हैं। उड़पता दी गल्लां नहीं करते कभी भी। उन्हां दा बोलिया परमात्मा दरगाह दे विच प्रवान हो जाता। मनमुख थाए ना पाए, जिहड़े मनमुख आ उह सदा झक्खां ही मारदे आ, सदा झूठ ही बोलते, कूड़ ही तोलते हर वक्त, फिर भाई दरगाह दे विच प्रवान नहीं हुंदे। पाला कक्कर वर्फ वरसाए, गुरसिख गुर देखण जाए। जिहड़े गुरु किसे गुरु नाल प्यार करन वाले है, वह जिन्नी मर्जी बर्फ पै जाए लेकिन फिर भी वह गुरु के दर्शन करने वास्ते नेम दे नाल जांदे हन, कदी नागा नहीं पाउंदे। सब दिन सरैण देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराए। उह सदा ही धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह शरण च आ के रात दिन गुरु के दर्शन करते हैं। सब दिन सरैण देखो गुर अपना, रात दिन गुरु के दर्शन करते हैं, विच अखी गुर पैर तराई, अपने अखों के सदा गुरु के चरणों में टकाई रखते हैं। हम गुरु के चरण किहड़े हैं? क्योंकि हिरदे चरण शब्द सतगुरु को नानक बाध्यो पाल, गुरु का शब्द गुरु के चरण हैं। तो जेडे ऐसे गुरसिख गुरु ना प्यार करने वाले आ, रात दिन गुरु के दर्शन च लगे रहिंदे आ, तो भाई वह फिर सदा ही गुरु के शब्द रूपी चरणों में अपने अखा के नेत्रां दे विच टकाई रखते हैं। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावै सो थाए पाए। भाई जेडे गुरु की प्राप्ति वास्ते अनेक उपाव करते, जतन करते हैं, अनेक पाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई पाई, उन्हों का ही जतन प्रमाण होने जे सतगुरु नूं पा जाते हैं, जेडे गुरु नूं चंगे लगते हैं। रैण दिन स गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। ये मेरे मालिक परमात्मा कार पुरख वाहिगुरु मेरे ते मेहर कर, मेरे ते दया कर, मेरे ते कृपा कर, कि मैं रात दिन ताडे चरणां दी आराधना करदा रहां, गुरु दे चरणां नाल जुड़िया रहां। नानका जियो पिंड गुरु है, गुरमिल त्रिवत अगाए। क्योंकि मेरा मेरी जिंद भी मेरा गुरु है, मेरा शरीर भी गुरु है, मेरा सब कुछ गुरु का ही है। जिंद भी मेरे गुरु की है, तो मेरा शरीर भी गुरु का है। तन मन धन सब सौंक गुरु को हुक्म मन्ने पाईए।
ਗੁਰਮੁਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹੋ ਹੈ ਜਤ ਕਰ ਤਤ ਗੋਸਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗ੍ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ 'ਚ ਪਏ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ 'ਚ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਦੁਖਾਲੂ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦੇ ਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਪੰਗੂ 'ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਿਮਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ।

0: ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਇੱਕ ਸੂਕਸ਼ਮ। ਉਹ ਜੋ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਹੈ। ਰੋਗ ਅਕਸਰ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਗ ਅਕਸਰ ਮਨ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੁਛ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਸੋਗ। ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸੋਗ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਸੋਗ। ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸੋਗ। ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਮਨ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੋ ਸੋਗ। ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਗਈ। ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ, ਮਨ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕੋਈ ਖੇਲ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਰੂਪ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਸਦੇ ਚ ਬੈਠੋ, ਖੇਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਸੋਗ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਗ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸੋਗ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਜਲਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਹੋਵਨ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਹੋਵਨ, ਤੋ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਨਰਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है चाहे रूप है, तमाशा है खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदत भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी हुई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग दे किस तरह ग्रस्त हो जाता है, किस तरह फस जाता है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देता है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़ता, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनता, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहा ही बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देता है, और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देता है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई विच बैठना चाहता है। सोग इस नूं महफलां विच नहीं बैठन देता, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देता, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देता, सोग संकोच के रख देता है, सोग सिकोड़ के रख देता है, सोग निचोड़ के रख देता है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नूं जन्म देता है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नूं जन्म देता है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है, इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने, क्यों पहुंचांदियां ने, पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं तो इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उहनां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इस दी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ये इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ये इस तरह है दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा पूरी करण देच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो ओ इच्छा ते कई दफा पूरी हो जांदी है ते जे ना पूरी होवे तां वी इक रेखा छोड़ जांदी है बाकी इच्छावां इन चलदियां रहंदियां ने जिवें नदी बह रही है बावें नदी दे कोल घर है बह रही है पर नदी नाल उतना ही मतलब है जो पी ले है पानी ओही हिस्सा बने है बाकी वग रहे है दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी इस आसा रूपी नदी देच पानी केड़ा है संकल्प जिस जिस इच्छा नू पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां ओ उस नदी दा जल बन जांदा है उस नदी दी धारा बन जांदी है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी इस आसा रूपी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी लाजमी होवेगी व्याकुली गंभीर है ए नदी गहरी कितनी है इदा पाठ कितना गहरा है ए चौड़ी कितनी है ए गहरी कितनी है तो ए राजयोगी ए महान संत मन दियां गहराइयां नू समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है व्याकुलता ही इसकी गहराई है बेचैनी ही इसकी गहराई है और एक हकीकत है बेचैनी अजे भी नाप तोल दे च नहीं आई कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है बहुत गहरी है बहुत गहरी है इदियां जड़ां नहीं लभदियां इदी तय नहीं लभदी व्याकुलता ही इसकी गहराई है जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है और जिथे परबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही ये इसनू उल्टा के कह दो ए बेचैन क्यों है तृष्णालु है ए तृष्णालु क्यों है एदे अंदर संकल्प ने संकल्प क्यों ने एदे अंदर इच्छावां ने इच्छा दी पूर्ति करना चाहता है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है आलम ते इस तरह कहंदे ने जिंदगी नापी जा सकती है चलो वध तो वध कह लिए 100 साल तृष्णा नहीं नापी जा सकती व्याकुलता नहीं नापी जा सकती और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है जमीन दे ते वगदियां या नदियां दे ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने ए किन्नी मील लंबी है इदा पाठ किन्ना चौड़ा है ए गहरी कितनी है एक कोई नदी है जो मन दे च वग रही है ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है ना गहराई नाप दे चाहुंदी है वो है आसा धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया बकायदा फैसला भी कर दिता है बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने जिसने अपने मन नू ही सामने रखे है और सोग किथे ज्यादा आउंदा है जिथे इच्छावां ज्यादा ने और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां होईयां ने रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं होईयां कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकदे या दावे नाल नहीं कह सकदे कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं एक भी नहीं होया गजब दी गल इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां हुई होन ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने ते इस तों वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लब ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां हुईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन दे च पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती दे च पक्की जिंदगी किसनू मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 15.98 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 15.98 ਦਾ, ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਲਵੋ 1.99 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।